जिसे देखो दिल की धुनी रमाता। अरे ये मंदिर नहीं है, शिवाला नहीं है, हसीनों से कह दो कहीं और जाएं, मेरा दिल है दिल, धर्मशाला नहीं है।

आकाशवाणी सुनने वालों भाइयों और बहनों और प्यारी दोस्तों, आप सबका मैं स्वागत करता हूँ। आई एम योर होस्ट जयदेव, वेलकम यू टू दिस वीक्स एडिशन ऑफ जेम्स ऑफ इंडिया विच कम्स टू विद कॉम्प्लीमेंट्स एंड बेस्ट विशेस ऑफ एनसीएन रेडियो। इट हैज ऑलवेज बीन अ प्लेजर टू ब्रिंग यू सम ऑफ द ग्रेटेस्ट हिट्स ऑफ यस्टरडे, एंड सो वी इनवाइट यू टू स्टे ट्यून्ड टू द वॉइस ऑफ गयाना एज वी बिगिन दिस मेलोडियस जॉय राइड, one in which we shall recapture the nostalgic memories of yesteryear. Dion McKenzie's on the console, and let's put the show on the road with the selection titled Tum Hi Mere Mandir.